देता तुसी कृपा करियो और मैं शक्के छड़ाऊंगा, बैरियां दे बदला लऊंगा, सरहंद नूं और वजीद खां नूं खत्म करना करना। लो हुण महाराज कृपा कर रहे है, गुरु साहब ने पत्थे जो पांच तीर दिते है, हुक्मनामा बख्शिया है, कृपा की 20 सिख होर देते, 25 सिखां दा जत्ता बनाता 25 दा, और कहिंदे आ हुक्मनामे ले जी, हुक्मनामे सिखां नूं तू देने है, इत्थों तू दखण तो पंजाब नूं जाएगा, तेरा काफला वधदा जाऊगा, हुण तुसी 25 हो, फिर 50, फिर सैकड़े, आए हजारां दी तादाद विच तेरी फौज विच शामिल होणगे। हुण बाजां वाले सतगुरु रेख च मेख मार के अमर छका के बंदा सिंह बहादुर दा बहादुरी दा खिताब दे के दखण तो जिवें पंजाब नूं तोड़दे है। मेरे साथी हरदेव सिंह दवाना, सरंगी मास्टर मनजीत सिंह दद्दाहूर और साथी ओंकार सिंह कंग

तुमरे गात मैं तो तुम्हें नानक दास। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी एक्के ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भौती जी सहाय वार, श्री भौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकाय। गुरु नानक लई ध्याए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमरो श्री हर राय, श्री हर किशन त्याई है। जह डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै, कर नौन दे आवे ताए सब थाई होई सहाय। दसवें पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, ओ सब थाई होई सहाय। दसों पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पितर पाठ दीदार दा ध्यान तर खालसे सब। बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौं सब जादियां, चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां, शहीद सिंघां सिंघणियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई ते गवाई दे के अंडर कीता, तिन्हां गुरमों प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे सब। बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्मे सीस दिते, बांध बांध कटाए चरखड़ियां ते चढ़े, आरिया नाल तन चरवाए, उबलदियां देगां विच उबाले गए खोपरियां लुहाईयां, गुरद्वारियां दी सेवा संभाली कुरबानियां कीतियां, तेरे भाणे नूं मिठा करके मनिया, असहे ते गए असार दे शहीदो सिक्कित केसां सुआसां संग नभाई तरमनी हारिया, तिन्हां समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे सब। बोलो जी वाहिगुरु। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे जी का देहंतर खालसे सब। बोलो जी वाह। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी, सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे। चेतावन का सदका सर्ब सुखो है, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियाज दे ते फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले खालसे सब। बोलो जी वाह। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रैत दान, विवेक दान, वसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहब जी के इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म गा जय कर। खालसे जी के बोल बाले खालसे सब। बोलो जी वाह। सिखा दा मन नीवा मत उची मादे राखे, आप काल पुरखंतर जामे गुरु गरीब नवास जी पातशाह, पाउंदे सदा सहाज दार पिता जी ओ श्री ननकाणा साहब। होर गुरद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया, सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी। निमाणियां दे माण, नदाणियां दे तान, नियोटियां दी ओण, आसरिआं दे आसरा, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब च पातशाह जी आप दी पार बख्श रहमत कृपा दा सदका आप दे हजूर। शामां दे दीवान सजे सजे दीवानां विच आप दे हर जस सोए ने कीर्तन कथा ढाडी बारां इतिहास की सेवा करदिया हुई फुलां बख्श लैणियां, पढ़ी सुनी बाणी का भाव सरबत संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा। सरबत संगतां दी हाजरी तिल फुल भेटावां रसदा आदिक अपने दर ते प्रवान करनियां, सिर ते मेहर भरिया तकड़ा तंदरुस्तियां बख्शणियां, परिवारां विच सुख वरतौणा, सरबत संगतां दे कारोबारां दी बरकतां, सेवादारां नूं चढ़दी कलावणी पान दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखणा, गुरु के लंगरां दी सेवा होरी दर प्रवान करनी, दवान की समाप्ति है मेहर करो, पवित्र हुक्मनामा बख्श के निहाल करो जी, सही गुरम प्यारे मेलो जिन्हां मिले अंतर नाम चेता आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा पल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोरा गया भई अकाल की, सब सिखन का हुक्म है, गुरु ग्रंथ जी मानियो, जो प्रभ को मिल बोच है, राज करेगा खालसा, खुआर हुए सब मिलेंगे, खुआर हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

का की मात पिता कहो काकू, कवन पुरख की जोई। काट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहुरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई। लाट छिटकाए तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, पै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई।

एपॉर्डिंग गुरमुख चलतर चायो न गुण प्रगति आया गुरबाणी सदियों चरे हर मन वसाया। शकत गई भ्रम कटिया शिवजोत जगाया जिन कै पोते पुन है गुरपुरख मिलाया। नानक सहजे मिल रहे हर नाम समाया श्लोक महला दूजा। शाह चले बन जा रहा लिखिया देवै नाल लिखे ऊपर हुक्म होए लइए वस्त संभाल।

थोड़ा कने न मंगे हो किस कहिए शाबाश, नदर ते ना को नानका जे साबत लाए रास माला पहला। जोड़ जोड़ विछुड़े विछुड़े जुड़े, जीव जीव मुए मुए जीवे, केत्या के बाप केत्या के बेटे, केते गुर चेले हुए। आगे पाछे गणत न आवे, क्या जाति क्या हुण हुए, सब कारण सब करना कृत कर लिखिए, कर कर करता करे करे, मन मुख मरिए गुरमुख तरिए, नानक नदरी नदर करे पौड़ी। मन मुख दूजा परम है, दूजे लोभाया, कूड़ कपट कमावंदे कूड़ होया लाया। पुत्र कलतर मोहित है, सब दुख सबाया, जम दर बद्धे मारिये पर मैं परमाया। मन मुख जन्म गवाया, नानक हर पाया, श्लोक महला दूजा। जिन वडियाई तेरे नाम की, तेरते मन माहे, नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे। नानक अमृत मन माहे, पाइये गुर प्रसाद, तिनी पीता रंग स्यों, जिनको लिखे आया दमहला दूजा।

0: आप सदीव है पूरा जिस भंडार, वड्डा करसा लाहिए अंत ना पारावार। पौड़ी हर का नाम निधान है, सेवे सुख पाई, नाम निरंजन चरा पात स्यों कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई। मात पंखेरु वस होए, सतगुरु त्याई, नानक आप दयाल होए, नामे लिवलाई। श्लोक महला दूजा। तिस स्यों कैसा बोलना, जे आपे जाने जान, चीरी जाकी ना फिरे साहेब सो प्रवान। चीरी जिसकी चलना, मीर मलक सलार, जो तिस पावे नानका साई पलीकार। जिन्ना चीरी चलना, हाथ तिन्ना केशना है, साहेब का फुरमान होए उठी कर ले पाए। जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कल्ले आवै नानका सदे उठी जाए। महला दूजा। सिफत जिन्ना को बख्शिए, सेई पोते दार, कुंजी जिन को दितिया तिन्ना मिले भंडार। जय भंडारी हूँ गुण निकलें, ते किए प्रवान, नदर तिन्ना को नानका नाम जिन्ना निशान। पौड़ी नाम निरंजन निर्मला, सुने सुख होई, सुन सुन मन वसाइए बूझे जन कोई। भगता को नाम आधार है, नामे सुख होई, बहतिया उठदिया ना विसरे साचा सच सोई।
1: वो डोर ना ओपन कर दो, हवा क्रॉस हो जाएगी, गर्मी बहुत है अंदर। आ जाओ, हाँ बात बंद कर दो।
0: बला सुने सुख होई, सुन सुन मन वसाइए बूझे जन कोई। बहिंदिया उठदिया ना विसरे साचा सच सोई। भगता को नाम आधार है, नामे सुख होई। नानक मन तन राव रहया, गुरमुख हर सोई। श्लोक महला पहला। नानक तुलिये तोल, जे जियो पिछे पाइये, इक सना पुजे बोल, जे पूरे पूरा कर मिले।

ब्राह्मण चुली संतोखी गिरि का सत दान, राजे चुली ने आम की पढ़या सच त्यान। पानी चेतना तो पई मुख पीते तिख जाए, पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी। नाए सुने सब सिद्ध है रिद पिछे आवे, नाए सुने नाओ नद मिल नो निद मिले मन चिंदिया पावे। नाए सुने संतो खोए कबला चरण ते आवे, नाए सुने सहजी उपजे सहजे सुख पावे। गुरमति नाओ पाइए नानक गुण गावे, श्लोक माला पहला। दुख विच जमण दुख मरण दुख वर्तन संसार, दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करें पुकार। दुखियां पंडा खुलियां सुख ना निकलियो कोय, दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोय। नानक सिफ तीरतिया मंतन हरिया होए, दुखिया की मारिया पी दुख दारू होए। माला पहला। नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे, पशु पास कमावणी पी पास परिय दे। जा जियो विचों कढ़िए पशु परिया जाए, अगे लिखे मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी। नाए सुने सोच संजमो जम नेड़ ना आवे, नाए सुने कट चानना या नेर गवावे। नाए सुने आप पुजिए लाहा ना हो पावे, नाए सुने पाप कटिए निर्मल सच पावे। नानक नाए सुने मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे, श्लोक महला पहला। कर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नावाल, कुंगू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए।

पहला, सबे सुरती जोग सब, सबे वेद पुराण, सबे करने तप सब, सबे गीत ज्ञान, सबे बुद्धि शुद्ध सब, सब तीर्थ सब थान, सब पातशाहियां अमर सब, सब खुशियां सब खान।

आखों आखां सदा सदा कण ना आवे टूट, ना हो थका ना ठाकिया एवड रखें जोत, नानक चस्यो चुख बिंद उपर आखण दोष पौड़ी, ना मने को लुधर सब कुटुंब सबाया, ना मने संगति उधर जिंद दे वसाया, नाय मने सुन उतरे जिंद सन रसाया, नाय मने दुख भुख गई जिन नाम चेत लाया।

सबे राती सब दिन सब तिथी सवार सबे रुति मां सब सब धरती सब पार सबे पानी पौन सब सब अग्नि पाताल सबे पुरियां खंड सब सब लो लो आकार।

जेता आखण शाही शब्दी भाखिया पाए सुपाई नानक बहुता एहो आखण सब तेरी वडियाई महला पहला।

जे चुपै जे मंगै दात करे दातार, एक दाता सब मंगते फिर देखें आकार। नाने

नानक नाम नचेतई जुए बाजी हारी। श्लोक माला पहला। लख स्यों प्रीत होवे लख जीवन, क्या खुशियां क्या चाओ, विछड़िया विसोए विछोड़ा एक घड़ी मैं जाए। जे सौवरिया मिठा खाजे पी फिर कौड़ा पाए, मिठा खादा चित न आवे कौड़त्तन ताए जाए। मिठा कौड़ा दोवें रोग, नानक अंत विगुते भोग। चख चख चखना चगड़ा चाख, चख चख जाए चखें तन पास माला पहला। कापड़ काठ रंगाया रंग, कर गच कीते बागे बाग। साध सहज कर मन खेलाया, तै शाह पासों कहन कहाया। मिठा

पौड़ी। जिनके हृदय मैल कपट है बाहर तो वाया, कूड़ कपट कमाम दे कूड़ प्रगटी आया, अंदर होए सो निकले न छपे छपाया।

अमृत बाणी तत्व खाणी ज्ञान ध्यान विच आई। गुरमुख आखी गुरमुख जाती सुरती कर्म ते आई। हुक्म साज हुक्मै विच रखै हुक्मै अंदर वेखै। नानक अगों होमै तुटै ताको लिखिए लेखै महला पहला।

जिन पूरब लिखिया कुरां पौड़ी लेखा पढ़िए हर नाम फिर लेख न होई पूछ न सके कोई हर दर साध ढोई जमकाल मिले ता भेट दे जमकाल मिले दे भेट सेवक नित होई।

सदा चित वह बेकार दरगे देखा मंकी उथे होहे कुड़ियार आपे सेठ उपायन आप करे विचार नानक किसनु आखी सब वरते आप सचियार महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या जिन कर्म प्राप्त होए नानक हो बलहारी तिन को जिन हार मान वसिया सोए पौड़ी आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन क्यों चित गड़मंड सवारिया नानक हो बलहारी तिन को जिन हर नानक हो बलहारी तिन को जिन हर वसिया मन सोए पौड़ी आसा करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया वरवंच कर उपाव माया हिर आनिया जमकार निहाले सास आव कटे बेतालिया नानक गुरसरनाई उपरे हर गुर रखवारिया श्लोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित बाद बखाने माया मोह सवाए दूजे भाई नाम विसारिया मन मूरख मिले सजाए जिन कीते तिसना सेवनी दिंदा रिजक संभाए जम का फाहा गलो न कटिया फिर आवे जाए जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए अनदन नाम त्याइंदे नानक सच समाए महला तीजा सच बण जे सेव दे जे गुरुख पैरी पाए नानक गुर ते भाणे जो चलै सहजे सा समाए पौड़ी आसा विच अत दुखना मनुख चित लाया भाणे जे चले सह सम गुरमुख पै निरास परम पद पाया विचे गिरे उदास अलिवत रिवलाया उन्ना सोक बिजोक न व्यापई हर भाणा पाया नानक हर

सुन त्यौन जे तिलक नाम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सत्या मन संतोख उपजय देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा

विचार होम चनक सुर गवतार होम च हसे होम च रोवे होम च भरिए होम च धोवे होम च जाति जिनसी खोवे होम च मूरख होम च स्याणा मोख मुगत की सारना जाना।

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब ते तुम मात पिता हम बारक तुमरी कृपा में कोई ना जाने तुमरा ऊचे ते ऊचा सगल समगरी तुमरे सूतर तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम्हें नानक दास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याये जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै करनौ निधावे ताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे चेते आवन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृत सर जी दे इशनान चौकियां झंडे बंगे जुगो जोगे अटल धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मादा रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे माण नितानियां दे ताण नियोटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरू आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलां पास अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना है गरीब नवाज पातशाह जी आप जी दे हजूर अमृत वेले नूं मुख रखदिआं दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना अंदर लड़ी वार चल रहे श्री सहज पाठ तों उपरंत शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन आनंद साहिब छे पौड़ियां दी अरदास समुची सेवा निभाउंदिआं आप जी दे बच्चिआं पासों होईआं बेअंत भुल्लां चुक्कां दी खिमा अगां तों समत बख्शिश करनी समूह संगत दी अरदास बेनती प्रवान करनी कदम कदम लेखे विचलाउणा आप जी दियां बख्शियां दातां दे विचों तिल फुल पेटावां दर ते प्रवान करनियां दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम दी दात दे के नवाजना मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां काम क्रोध लोभ मोह हंकार तों बचा के
ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ

बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

तब सूझे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सूना मंदर होई, जब लग तेल दीवे मुख बाती।

जुगो जुग अटल। चवर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर, शब्द गुरु बाणी के बोहित, अमृत के दाते, दसां पातशाहियां दी जोत, साहब सच्चे पातशाह, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तों सज्जे दीवाना दीयां हाजरियां भर रहे सन्मान योग

ना होई। कक्का किरण कमल में पावा, सस बिगास संपट नहीं आवा। अर जे तहां कुसम रस पावा, अकै कहां कह का समझावा। खखा एह खोड़ मन आवा, खोड़ै छोड़ ना दह दिश तावा। खसमै जान खिमा कर रहे, तो हुए निखे ओ।

देहुरी बैठी माता रुवे, खटिया ले गए भाई, लट छिटकाए त्रिया रुवे, हंस केला जाई, कहत कबीर सुनोरे संतो, भै सागर कहताई, इस बंदे सिर जुलम होत है, जम नहीं हटे गुसाई, कहत कबीर सुनो रे संतो, भै सागर कहताई, इस बंदे सिर जुलम होत है, जम नहीं हटे गुसाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुटान कुटान शुकराना अकाल पुरख वाहिगुरु दा। वडभागी हो सजे दवाना दियां हाजरियां भर के जिंदगी दियां इन्हां घड़ियां श्वासां नूं सफलियां करन दा उद्यम करदे हो। अमृतमई बाणी दे कीर्तन, गुरमत विचारां, ढाडी वारां इतिहास ते गायन होए ने। सतगुर कृपा करे पढ़ी सुनी बाणी दा भाव साढ़े सारिआं दे हिरदिआं ते वसे। हुण कड़ा प्रसाद दी देग वरत रही है, तो इत्थे ही दुपहर दे दवान दी समाप्ति है। जाण वालियां संगतां नूं बेनती है, गुरु के लंगर तैयार ने, आप जी ने लोड़ मुताबक छक के जाने जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।